0: 206-2004.
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट। सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
2: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
3: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757।
2: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।
4: कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएसिस स्माइल मेडिकल। सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन। चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारयां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है। नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी अज ही डायल करो 587-617-4696 587-617-4696 ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 587-617-4696।
5: The time is 5 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 5876174696 587-617-4696 ਓਇਸੇ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 5876174696 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਰਈਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
1: ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਸਿਰਫ $7 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਸੁੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆਉਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-947-0060 ਜਾਂ ਆਓ ਯੂਨਿਟ 530-669 ਸਵਾਨਾ ਬੁਲੇਵਰਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ
2: नमस्कार सलाम याली मदद सत श्री अकाल वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका अपने इस प्रोग्राम में खैर मुद्दम करता हूं हार्दिक स्वागत करता हूं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों कैलगरी का मौसम बहुत बढ़िया होता हुआ और एक बार फिर से मैं कह सकता हूं कि आप जो भी इस समय भगवान हमें दे रहा है ऊपर वाला दे रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें और मस्ती करें दबाकर क्योंकि जल्द ही ठंड जो है वो आने वाली है और फिर मौसम जो है सिंगल डिजिट्स में रह जाएगा तो भी जितनी धूप हमें मिल सकती है और जितना हम लोग बाहर निकलकर आनंद कर सकते हैं आप जरूर करें कैलगरी में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और उस इवेंट्स की जानकारी हम आपको देते रहते हैं ऐसे ही एक जानकारी लेके हमारे साथ जुड़ेंगे देवेश ओबराय जी और उनकी टीम अभी कुछ टाइम में जब तक आप थोड़े गीत संगीत का आनंद लीजिए और कुछ मैसेज सुनिए हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से एक इंफॉर्मेशन मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा अमृत सागर फाउंडेशन एंड पर्ल प्रिंटर्स इन एसोसिएशन विद यूटन प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेके आए हैं 9th सीनियर स्पोर्ट्स डे 2026 ये 9वां साल है जबकि अमृत सागर फाउंडेशन ये स्पोर्ट्स डे मना रहा है सीनियर्स के लिए ऑल द सीनियर्स फ्रॉम एनी कम्युनिटी जो कि 60 साल से ऊपर हैं यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं और अमेजिंग गेम्स जो कि फन गेम्स होती हैं यहां पर कोई हॉकी फुटबॉल ताश नहीं होती लेकिन बहुत ही बढ़िया गेम्स जिसके अंदर जो बुजुर्ग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेरों इनाम मेडल्स सर्टिफिकेट्स ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री होता है कोई इसके अंदर डोनेशन नहीं कोई पैसा नहीं लगता और इस प्रोग्राम में आप के जो बुजुर्ग हैं आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स एनीबडी हु इज अबव 60 कैन पार्टिसिपेट अगर कोई व्हील चेयर पे है तो वो व्हील चेयर भी के साथ भी इन गेम्स को खेल सकते हैं हमारे सारे स्पॉन्सर्स अमृत सागर फाउंडेशन की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे मीडिया पार्टनर्स उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हर साल हमें सपोर्ट करते हैं इस प्रोग्राम को कैलगरी वासियों तक लेके आने के लिए स्पोर्ट कैलगरी ने पहली बार इस प्रोग्राम को एंडोर्स किया और अपने पोर्टल्स पे इस प्रोग्राम को उन्होंने

सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो एक बहुत बड़ी बात है। तो अगेन ये प्रोग्राम होने जा रहा है 5 सितंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जेनेसिस सेंटर में, हॉकी फील्ड 1 जो कि लोअर लेवल पे है। तो जेनेसिस सेंटर काफी कन्वीनियंट जगह है, वहां पर हर कोई ट्रेन बस या गाड़ी से पहुंच सकता है, एम्पल पार्किंग है और बुजुर्गों के लिए खाने पीने का भी प्रबंध किया जाएगा, हेल्दी फूड वहां पर दिया जाएगा ताकि सब लोग वहां पर आकर इसका आनंद ले सकें। और अगर आप 3-4 घंटे वहां बैठे हुए हैं तो आपको एटलीस्ट अगर भूख लगती है तो उसका भी प्रबंध ऑर्गेनाइजर्स ने किया है। अगेन ये बिल्कुल फ्री इवेंट है और आप इसके अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप फोन के थ्रू रजिस्टर कराते हैं तो आप फोन कर सकते हैं अमृत ब्रार जी को 4033975566 पर, नंदन कुमार जी को 4033970346 पर, अगेन 4033975566 या 4033970346। या आप हमारे स्टूडियो में अगर आप मिस कर गए हैं तो स्टूडियो में 4039032123 पर आप फोन करके इस प्रोग्राम की जानकारी रेडियो सुर संगम से भी ले सकते हैं। तो अगेन 9th सीनियर स्पोर्ट्स डे 2026 आपके लिए लेके आए हैं सितंबर 5th 2026 12 बजे से लेके 5 बजे तक। सबसे गुजारिश यह है कि स्पॉट्स लिमिटेड होते हैं तो आप प्लीज जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर इन केस आप उस दिन आना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी पहुंचें ताकि आप अपना नाम रजिस्टर करा सकें। और अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजर्स 12 बजे ये पूरी गेम्स स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है वहां पर और जैसे सेंटर में लिमिटेड लोग अलाउड होते हैं एक ग्राउंड के अंदर तो उनको उन चीज का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं तो इसके लिए सही टाइम पे गेम शुरू होंगी तो सही टाइम पे खत्म होंगी ताकि ग्राउंड जो है वापस ऑर्गेनाइजर्स जेनेसिस को सही हालत में दे सकें। तो प्लीज आप पहुंचे सितंबर 5 को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जेनेसिस सेंटर में।

पिक्सल फोटो स्टूडियो लोकेटेड इन सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइजेस पे फैमिली फोटोज करवानी है, बेबी फोटोज करवानी है, बिजनेस पोर्ट्रेट्स कराने हैं, पासपोर्ट फोटो चाहिए, तो प्लीज आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। उनका फोन नंबर 4039470060। सोनिक इंश्योरेंस लुकिंग फॉर द बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस इन अल्बर्टा, याद रखें सोनिक इंश्योरेंस। मानिस पूजा जी बेस्ट सर्विस देते हैं और बेस्ट रेट्स उनके पास आपको ट्रक इंश्योरेंस के मिलेंगे। 5878321208। वाईवेसी होम केयर बुजुर्गों के लिए, आपके घर में अगर आपको होम केयर की जरूरत है तो वीरपाल कौर डट जी से आप कांटेक्ट करें। 8257600983। बहुत ही रिलायबल सर्विस, और उनकी तरफ से ये मैसेज है कि कोई भी जो आपके केयर गिवर्स हैं उनको बदला नहीं जाता है, ताकि आपका जो घर का माहौल है वो घर जैसा रहे और कोई भी ऐसी शिफ्ट चेंज नहीं होती है और आपको कोई पैसा नहीं भी देना ही नहीं पड़ता है इनकेस आप क्वालिफाई करते हैं। तो फ्री इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8257600983 पर। ओएसएस माल मेडिकल खुल गया है सेंड्रिज एरिया में, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में। अगर आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए, अगर आप वहां पर न्यू पेशेंट्स भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो फोन नंबर है 5876174896। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स, अगर आप अपने सपनों की कार जो कि मर्सिडीज है उसको लेना चाहते हैं, तो बेस्ट रेट्स और बेस्ट सर्विसेज के लिए आप कॉल कर सकते हैं गौरव शर्मा जी को। फोन नंबर 4039056757।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो सत्संगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर. एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मैं हाजिर होता हूँ.
1: निगा वेलकम. फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ. असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक. ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696. ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाड़ी सेहत साडी जिम्मेवारी. 5876174696.
2: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया.
1: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन.
1: ओहो, रह गए ना फेर पिछे. मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है. तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको. फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001. सोनिक इंश्योरेंस.
0: दोस्तों, जैसे कि प्रोग्राम के शुरुआत में कहा, बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं इस समय कैलगरी के अंदर. तो ऐसा ही एक अमेजिंग इवेंट होने जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का, जो कि आपके लिए लेके आ रहे हैं सनातन स्टूडेंट्स सोसाइटी. यहां पर पूजा कीर्तन होगा, आरती होगी, कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगे, एक्टिविटीज, स्टॉल्स और प्रसादम की व्यवस्था है. ये है संडे को सितंबर 6, 2026 शाम को 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक. वेन्यू है फैल्कन रिज कैसल रिज कम्युनिटी एसोसिएशन का जो कम्युनिटी सेंटर है, वहां पर आप पहुंचिए. अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन

0: चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8257341279 पर।
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया। कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम। सब दा मान सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।

0: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
1: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर। जैसा कि प्रोग्राम में मैं बोलता चला आ रहा हूं कि हमारे समर्स का टाइम जो है वो बस जाने ही वाला है, तो उसको आप एंजॉय करें, मस्ती करें, और जितने भी हमारे इस समय कैलगरी में इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप भरपूर एंजॉय करें। ऐसे ही एक बहुत अमेजिंग संस्था है इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी, जो कि अमेजिंग अमेजिंग प्रोग्राम्स इवेंट्स हमारे सब के लिए लेके आती है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, और भी कोई भी इवेंट हो उसके अंदर ये लोग बढ़ चढ़ के प्रोग्राम्स पूरी कम्युनिटी के लिए लेके आते हैं। ऐसा ही एक बहुत अमेजिंग फेस्टिवल है गणेश उत्सव, जो कि दुनिया भर में मनाया जाता है, और जहां जहां हम लोग गणपति के प्रेमी हैं इस उत्सव को दिल खोल के मजे से मनाते हैं। डांस होता है, मस्ती होती है और रंगारंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी आपके लिए लेके आ रही है गणेश उत्सव, जो कि अगेन होने वाला है 5 सितंबर 2026 1 बजे। लोकेशन है जेनेसिस सेंटर की, और उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज देवेश जी ओबराय जी और उनकी टीम। उनसे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि और क्या क्या होने वाला है। देवेश भाई बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में।
2: थैंक यू मृत भाई, थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग अस।
1: ये तो हमें थैंक यू कहना चाहिए कि आप हमारे को माध्यम चुनते हैं अपना इस प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हैं मनोज जी, जो कि काफी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार दोबारा स्टूडियो आने के लिए।
3: थैंक यू सो मच।
1: और फिर है हमारे साथ रेशमा जी। रेशमा जी वेलकम टू द शो।
4: थैंक यू।
1: सो देवेश जी शुरू करते हैं गणपति बप्पा जी के प्रोग्राम से और इन्फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना टाइम हो गया ये गणेश उत्सव मनाते हुए।
2: अमृत भाई ये 6th एनुअल गणेश उत्सव है हमारा।
1: क्या बात है,
2: 6 साल हो गए हैं
1: जी।
2: 2021 में हमने बहुत ही छोटे स्केल पे स्टार्ट किया था इसको रियो बैंक्वेट में
1: जी।
2: उसके नेक्स्ट ईयर हम इसको जेनेसिस सेंटर में ले गए थे
1: जी।
2: तो उस टाइम पे वो तब का लाइक एज ऑफ देन ये सबसे बड़ा गणेश उत्सव था कैलगरी का।
1: अच्छा।
2: बस फिर तब से बप्पा की ऐसी कृपा है कि बस अब हर साल ही होता है और इस साल फिर हो रहा है। एंड दिस इज द 6th एनुअल गणेश उत्सव बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी।
1: क्या बात है, क्या बात है। मनोज जी आपसे जानते हैं कि आप ऐसे कब से जुड़ी हुई हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी के साथ।
4: 2018
1: भूल गए इतना टाइम हो गया हिस्ट्री बन चुकी है
4: 2017 नवंबर में कभी कुछ ऐसे मैंने एक पोस्ट डाली थी और उसके बाद से टीम ही बन गई
1: ये सारी जो खुराफात है ये पोस्ट से शुरू होती है, क्योंकि अगर पोस्ट नहीं डालेंगे तो फिर लोग लगता है ये कुछ काम अधूरा हो गया। आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा हमारे पे हावी है दैट अनलेस सोशल मीडिया पे पोस्ट जाए वी डोंट फील के लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। क्या कहेंगे आप।
4: हाँ
1: बस इतना सा हाँ
4: ये बड़ा कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैं सोच रही थी कि मतलब यहाँ पर रेलेवेंस होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए मैंने हाँ पे ही चुप हो गई।
1: नो वरीज रेशमा जी एक बार फिर से आपका स्वागत। सो हाउ लॉन्ग यू बीन विद इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी।
4: सो आई हैव बीन विद आईएससी फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। आई स्टार्टेड विद गणेश उत्सव एंड इट्स गोइंग टू बी अगेन लाइक यू नो माय 1 year एनिवर्सरी विद आईएससी। And thanks to Devesh and Manu and the rest of the IIC team for making me feel so welcomed. And I really feel like IIC is a whole family, so I'm really glad to be with them.
1: Yeah, aapne bilkul sahi kahi, kyunki inki jo team

0: टीम है ना उसके पास आकर ना यू फील दैट इट्स लाइक अ वेरी डोसाइल एटमॉस्फेयर एंड यू फील कंफर्टेबल. इट्स नॉट दैट कि थोड़ा सा ऊपर का लगता है कि यार मैं कहां पे फंस गया या ये क्या लोग हैं. सब लोगों को ये इस तरह प्यार से अपने साथ जोड़ लेते हैं कि आपको लगता ही नहीं कहीं आप कल जुड़े हैं. ऐसा लगता है सालों से, जैसे मनु जी ने कहा पता नहीं कितने साल हो गए, अब तो याद भी नहीं है.
1: दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली, बिकॉज एवर सिंस आई जॉइंड मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं आउटसाइडर हूँ. राइट, आई ऑलवेज फेल्ट वेलकम्ड एंड दिस लाइक यू नो आई हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटीज वेयर एवर माय इंटरेस्ट वर. सो इट मेड मी फील मोर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अदर इवेंट्स एंड लाइक यू नो बीइंग पार्ट ऑफ आईएससी एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर इट दैट आई फाइनली डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ यू गाइस.
0: देवेश भाई देख लो, लोग आपकी तारीफ किए बगैर छोड़ते नहीं.
2: अमित भाई बस ये ना हमारा क्या है फिलॉसफी बेसिकली कि जो काम करना चाहता है
0: जी
2: उसके लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं
0: जी.
2: जिसको लीडरशिप का रोल चाहिए, पोजीशन चाहिए, लीडरशिप ट्रेनिंग चाहिए
0: जी,
2: उसके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज है ना. अभी डिपेंड करता है हमारे वॉलंटियर्स पे कि वो उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं. अगर वो कर लेते हैं तो नॉट ओनली दे विल शाइन
0: जी
2: बट ऑल्सो इट एडवांसेस द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारी तो शुरू से ये फिलॉसफी कि जो अच्छा जो भी वॉलंटियर अच्छा काम कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशन में चाहे नॉन लीडरशिप पोजीशन में, हमारा हमेशा से रहता है हम उनको इनकरेज करें, प्रमोट करें, सपोर्ट करें और वी मेक श्योर कि उनके पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अलाइन हो और दोनों ही इसमें लाइक अच्छा फील करें.
0: जी एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू. मनु जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर?
3: बस सेम थिंग यहाँ पे है. एक चीज और है कि एक एनवायरमेंट जो इनको मिलता है ना, एक लविंग एनवायरमेंट जिसमें वो बिलोंग कर पाते हैं कि उनको लगता है कि हमारा कुछ है. ऐसा नहीं कि बस आए गए वॉलंटियर किया और खत्म हो गया. टाइम टू टाइम चेकअप, टाइम टू टाइम एक्टिविटीज, कभी कभी बड़े इवेंट्स होते हैं, कभी छोटे इवेंट्स होते हैं और कभी ऐसे ही मैसेज करके तंग कर देते हैं, भाई कैसे हो, ठीक हो? तो हाँ, कभी रात के 11 बजे मैसेज भी करके अगर मन कर रहा है भाई तुम ठीक हो ना, तो उस तरह की लिबर्टी दोनों तरफ से होती है एंड दैट मेक्स
0: बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा देवेश भाई. पर आप इसको मजाक में ले रहे हैं बट ये बहुत बड़ी बात है स्पेशली इस कंट्री में आके, बिकॉज वी आर अवे फ्रॉम द होम. अगर आपको यहां पर एक घर जैसा माहौल मिले जो कि आपका अपना घर नहीं, कोई और है जो आपको वो इज्जत दे रहा है, वो आपको प्यार दे रहा है, आपको फैमिली की तरह रख रहा है, वो यहां पर बहुत मुश्किल से मिलता है. बहुत स्केर्सिटी है उस चीज की कि लोग उस चीज से आप दूर रखते हैं अपने आप को. दे वॉन्ट टू बी मोर प्रैक्टिकल, लेकिन हमारी सभ्यता प्रैक्टिकल की नहीं है. हम लोग दिल से सोचने वाले लोग हैं यार, हम कभी दिमाग से बहुत कम सोचते हैं. ये मैं अपने बारे में बता रहा हूं और मैंने जितने भी लोगों को मैं जानता हूं उसमें काफी लोग हैं जो दिल से सोचते हैं. कभी दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग भावुक लोग हैं. हम लोग कोई किसी का दर्द नहीं देख सकते, उसका दर्द अपना बना लेंगे. हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर जो है वो यही कहता है कि सबको अपना बना लो, किसी का दर्द भी है वो भी ले लो. और मेरे ख्याल से सब लोग, हमारे जो संत महात्मा भगवान सबने यही बताया है कि अगर आप किसी के दर्द में शरीक, खुशी में शरीक होना हो दर्द में जरूर शरीक हो. और बप्पा की बात करते हैं तो बप्पा तो सबके ही यू नो दुख हरने वाले हैं और पता नहीं ऊपर वाली कृपा है. मैं जब भी जाता हूँ इंडिया, चाहे किसी भी कोने में हूं, लेकिन मैं जरूर जाता हूँ गणपति जी के दर्शन करने के लिए मुंबई में और वहां पे सिद्धि विनायक, और मैं जरूर दर्शन करके आता हूँ वहां पर, चाहे जिस मर्जी हाल में हूं, लेकिन मैं वो बुलाते जरूर है मेरे को, जरूर मैं माता देख के आता हूँ. सो दोस्तों गणेश उत्सव होने जा रहा है. देवेश भाई क्या क्या होगा इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा डिटेल में बताएं.
2: बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है अमृत जी. सो वी स्टार्टेड 1 PM, 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है और पूरा ड्यूरेशन अगर एंड टू एंड देखें तो 1 बजे से 6 बजे तक का प्रोग्राम है
0: जी,
2: पूरे 5 आवर्स का
0: जी.
2: तो 1 बजे से 2:30 बजे तक लाइक 1 to 2:30 PM इज अ लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज और हमने इस बार आर्टिजन बूथ्स भी काफी सेटअप किए हैं. तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर शॉपिंग अराउंड, फॉर शॉपिंग लाइक यू नो जैसे विमेन की ज्वेलरी क्लोथ्स हो गए, थोड़ा किड्स प्रोडक्ट्स हो गए, थोड़ा होम डेकोर आइटम्स हो गए. तो बहुत सारे वेंडर्स हमने सेटअप किए हैं. तो जैसे अभी गणेश उत्सव आ रहा है, फिर नवरात्रि, फिर दिवाली, तो उन सबकी शॉपिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो पहला जो 1.5 घंटा है वो इसी पे फोकस्ड, हेविली फोकस्ड है. फूड वेंडर्स भी हमारे पास 6 हैं ऑलमोस्ट, सब अलग अलग क्यूजीन लेके आ रहे हैं. तो अगर आप 1 बजे आ जाते हैं तो यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप एक्सप्लोर करें शॉपिंग के लिए क्या है, खाने पीने के लिए क्या है, वो सब बहुत है. फिर 2:30 पे हम अपना जो प्रोसेशन है ढोल ताशा के साथ वो स्टार्ट कर देंगे. तो ढोल ताशा में क्या होता है बेसिकली कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बप्पा को लेके जाते हैं, फिर

0: डांस हो तो उसी से कंप्लीट होता है इवेंट, फिर एक कम्युनिटी डांस का सेगमेंट है वो सब हो जाएगा, तो फिर उसके बाद विसर्जन 6 बजे, देन द इवेंट इज ओवर। बट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग का सेगमेंट है वो थ्रू आउट द इवेंट रहेगा, शॉपिंग फूड वगैरह जो है किड्स एक्टिविटीज वो थ्रू आउट द इवेंट रहेंगी, और ये सब बाकी जो चीजें ये साथ साथ चलती रहेंगी।
1: क्या बात है रेशमा जी, हैव यू बीन टू एनी काइंड ऑफ जैमिंग, भजन जैमिंग बिफोर?
2: नो,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम।
2: आई एम एक्साइटेड एक्चुअली।
1: मनोज जी आपने देखा है?
3: मैंने देखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कोई भी चीज ना जब तक हम अपने तक रखेंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देंगे तब तक हम उसको डेटा ट्रांसफर ठीक से कर नहीं रहे हैं। तो जो जैमिंग है वो न्यू वर्जन है और इसमें यूथ हमारी बहुत इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हम जैमिंग कर रहे हैं।
1: अभी थोड़े दिन पहले मेरे प्रोग्राम में आर्ट ऑफ लिविंग से टीम आई थी, दे आर डूइंग जैमिंग, भक्ति जैमिंग, और जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया उनकी एक बात मेरे को बहुत हिट करी कि जो आजकल का यूथ है उनको हम कैसे जोड़े, राइट? बहुत गहरी बात उन्होंने बोली। दे आर इनटू म्यूजिक, दे आर इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, अब डिफरेंट जॉनर्स होते हैं रेशमा जी प्रोग्राम अपने म्यूजिक के, सूफी है, क्लासिकल है, जैम है, और स्लो रॉक है, रॉक है, हैवी मेटल है, अब सबकी अपनी अपनी पसंद है। अब भगवान के साथ कैसे जुड़े यूथ को, तो भाई हमारा कल्चर तो है ही, लेकिन उनके इंटरेस्ट के लिए हम क्या करें, तो हमने भजन्स को मॉडिफाई कर दिया और भजन्स को ऐसी ट्यूनिंग दे दी कि हम राम का नाम ले रहे हैं, गणपति का नाम ले रहे हैं, लेकिन उनकी म्यूजिक में ले रहे हैं। तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक इट्स अ सुपर हिट। मैंने बहुत साल पहले नुसरत अली खान साहब, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका एक प्रोग्राम देखा था बॉस्टन के अंदर, दिवेश भाई पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, मैं सबसे एंड में बैठा था क्योंकि मैं फ्री वाला बंदा था, टिकट मेरे पास बहुत ही पैसे के नहीं होते होते टिकट खरीदने के लिए, तो वहां पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और मेरे साथ बहुत ऐसे लोग थे जिनका पैसे नहीं थे टिकट लेने के लिए, लेकिन वो उस कॉन्सर्ट को देखना चाहते थे, अंदर तो नहीं जा पाए, बाहर स्क्रीन लगी हुई थी, लोग बाहर बैठ के उसको देख रहे थे, जितने लोग वहां बैठे थे वो सब झूम रहे थे, सूफी म्यूजिक चल रहा था और दे वर एंजॉयिंग इट, उनको कख नहीं समझ आ रहा था क्या गा रहे हैं वो, लेकिन जो तान थी, जो वाइब थी, जो म्यूजिक था, बस वो हिट कर रहा था। तो सेम थिंग हमारे भजनों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी तरह का रूप हो, किसी भी तरह का म्यूजिक हो, आई बिलीव वो आपको डेफिनेटली उसके अंदर ले जाएगा, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और आप जो करने जा रहे हैं जितना ज्यादा पॉपुलर हो दिवेश भाई ये उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे आर्ट ऑफ लिविंग कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मैं तो सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि जितना ज्यादा यूथ को जोड़े, बिकॉज हमारा फ्यूचर वो ही है। अभी जो जनरेशन आई है उनका तो अभी 10 साल 15 साल बाद पता चलेगा, जो लोग मेरी उम्र के हैं उनको तो पता चल ही गया है कि क्या दुनिया का, आपने पहले बोल दिया, मेरी वाइफ से पूछे मेरी आवाज सॉफ्ट क्यों है, तो अभी जो जनरेशन आ रही है
0: हम शेयर नहीं कर
1: पाए। जो यूथ है, नहीं मैं तो एक एग्जांपल दिया दिवेश भाई, तो जो यूथ है उनके लिए हमें ये सब करना है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के। जी जी प्लीज,
0: जैसे आपको भी पता है, आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी सबको पता है, क्योंकि इतने सालों से हम ये शेयर कर रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी इज नॉट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन।
1: जी,
0: तो इस तरह का जो रिलीजियस इवेंट भी होता है ना, हम उसको एक कल्चरल इवेंट के तौर पे
1: प्रेजेंट कर देते हैं,
0: जहाँ पे हमारे कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं, वेंडर्स हैं, आर्ट वर्क है, और इस तरह का कल्चरल परफॉर्मेंसेज है विच सॉर्ट ऑफ यू नो इट्स अ फ्यूजन बिटवीन रिलीजियस एंड कल्चरल प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से हम अपने आप को लाइक प्रेजेंट भी करते हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं, ताकि हर कोई इन्वॉल्व हो सके। अभी हर कोई सेम रिलीजन से तो बिलोंग नहीं करता है, सेम रीजन से भी बिलोंग नहीं करता है।
1: जी,
0: अब जो लोग महाराष्ट्र से नहीं आते हैं, कर्नाटका बेल्ट से नहीं आते हैं, जिनके स्टेट का ये मेन फेस्टिवल नहीं है, वो कैसे अपने आप को बिलोंगिंग फील करेंगे? तो इसके लिए, इसीलिए हमने इसको एक कल्चरल इवेंट का वो दे दिया है प्रोजेक्शन, ताकि देर इज समथिंग फॉर एवरी वन इन दिस। अगर आप भजन से लाइन नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप वो प्रोसेशन देखें, ढोल ताशा के साथ डांस करें, वो भी है, शॉपिंग करें, किड्स एक्टिविटीज करें, एक फैमिली डे आउट है और एक फ्री इवेंट में आपको ये सब मिल रहा है, तो आई थिंक देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन और सब सबके लिए एक बहुत ही फन इवेंट होने वाला है ये.
1: बिल्कुल, मैं मनोज जी के पास और रेशमा जी के पास आता हूँ दोबारा से, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जब हम विसर्जन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर काफी आजकल ये चल रहा है सोशल मीडिया में और मीडिया के अंदर कि जी ये जो विसर्जन होगा इसकी वजह से कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो उसके बारे

0: में थोड़ी सी आप लाइट डालना चाहेंगे कि ये जो गणपति जी होंगे ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, क्या है इसकी क्या प्रक्रिया होगी प्लीज?
1: बिल्कुल अमृत जी, और ये कंसर्न बहुत ही वैलिड है, और हम इस सिटी में, इस कंट्री में रहते हैं, ये हमारा कंट्री है, तो हमें सोचना पड़ेगा अपने एनवायरमेंट के बारे में।
0: जी जी।
1: तो और ये आज से नहीं, हम जब से हमने स्टार्ट किया है 6 ईयर से, तब से हम ये बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसा होना चाहिए। तो फर्स्टली, फर्स्ट थिंग वी मेक श्योर इज कि हमारे गणपति जो इको फ्रेंडली हो।
0: जी।
1: सेकेंडली, हम इसको किसी नदी, तालाब, पॉन्ड में नहीं विसर्जित करते हैं।
0: जी।
1: हम एक मैसिव बकेट लेके आते हैं।
0: क्या बात है।
1: उसको फिल करते हैं।
0: जी।
1: और शाम को गणपति जी को उसी में विसर्जित करते हैं।
0: क्या बात है।
1: और ऑब्वियसली आधे एक घंटे में तो होगा नहीं, तो फिर हम उसको, हम में से कोई उसको अपने घर ले जाते हैं, फिर हमारे बैकयार्ड में वो रहते हैं, तो धीरे धीरे धीरे करके जो इको फ्रेंडली गणपति है उसमें डिजोल्व हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो वो एक फिर मिट्टी सी बन जाती है, वो फिर हम अपने लॉन में डाल देते हैं, अपने बैकयार्ड में, अपने पेड़ों में डाल देते हैं।
0: जी।
1: तो ना वो मलबा किसी
0: रिवर में जाता है,
1: पॉन्ड में जाता है, वो हमारे घर पे ही रहता है बेसिकली, और इको फ्रेंडली, तो उससे सॉइल भी
0: फर्टिलाइज हो जाता है,
1: खराब नहीं
0: होता। क्या बात है, क्या बात है। वैष्णो जी, नाउ आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर प्रोग्राम के रूपरेखा में, या अपनी तरफ से एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस कन्वर्सेशन?
2: वेल, लाइक देवेश सेड, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एक्चुअली। बिफोर जॉइनिंग आईएसए आई यूज्ड टू कम टू आईएसए एंड देन जस्ट लाइक यू नो एंजॉय द इवेंट्स, बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, and yeah, I think it's for everybody, it's for like, you know, there's no age group. That's the best about Ganesh Utsav that happens with IC, like, you know, it's for kids, it's for youth, it's for adults and everybody. So yeah, that's it.
0: Manuji, yoga ke alawa aap योगा के अलावा आप अब इस गणेश उत्सव में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हाउ? क्योंकि आप अब बैक स्टेज में हैं, राइट? मस्ती का दिन भूल गए, अब इवेंट जो आता है उसमें जो सबसे ज्यादा रेल बनती है वो ऑर्गेनाइजर्स की बनती है, ठीक है ना? आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, सब घर जाएं तो खुशी खुशी जाएं, ताकि अगले प्रोग्राम में दोबारा आएं, बिकॉज ये सब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर रहता है। तो आप क्या ऐड करना चाहेंगी?
3: क्या दो क्वेश्चन आपने पूछे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे आपके लोगों के लिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस बार हम लोग कर रहे हैं। हमेशा हम लोग कहते थे ना कि गणेशा मेकिंग वर्कशॉप इज ओनली फॉर किड्स, इस बार हम इसे सबके लिए कर रहे हैं। तो सभी लोग आइए, गणेशा बनाइए, और जैसे हमने बताया है वैसे ही विसर्जन करिए उसका। इधर उधर कुछ भी नहीं डालिए, अच्छे से आइए, सुंदर से गणेशा बनाइए, और गणेश चतुर्थी में जिसको जिसको अपने घर में गणेशा जी रखने की इच्छा है ना, वो सारे लोग अपने लिए गणेशा जी बना करके ले जाइए, सुंदर से घर पे स्थापित करिए, और उनका विधि पूर्वक और एनवायरमेंट फ्रेंडली विसर्जन करिए, और इससे आईएससी को प्राउड बनाइए कि हमने अपने स्पिरिचुअलिटी का जो काम था वो भी किया, और हमने बींग अ कैनेडियन जो करना था उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल, विदाउट किसी का गुस्सा अपने किए हुए कि भाई ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, नहीं, जैसे हमने किया वैसे ही करिए, और दिखाइए कि हम अपने फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाते हैं, बिल्कुल कचड़ा नहीं करते, लेकिन अपनी पहचान को बना करके रखने के लिए अपने सारे कल्चर्स को फॉलो करते हैं।
0: क्या बात है। तो हम लोग वहां पर अपने गणेश जी खुद बना सकते हैं, आप मटेरियल देंगे बनाने के लिए?
3: हाँ जी।
0: अरे भैया क्या बात है, तो ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सीरियसली?
3: हर साल होता
0: है, लेकिन क्या मतलब कभी डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि अगेन बहुत अच्छी बात है कि वर्कशॉप है, आप वहाँ पर बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी रहे,
3: बच्चे बनाए, बड़े बनाए, सुंदर सा बनाइए, घर पे ले जाइए, उनको बिठाइए, और आईएससी के ग्रोथ के लिए भगवान से बोलते जाइए।
0: क्या बात है, क्या बात है। सो दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी आपके लिए लेके आई है गणेश उत्सव। बप्पा जी आ रहे हैं, आइए उनका आशीर्वाद लीजिए, और अगले साल के लिए कि वो साल अच्छा हो, बढ़िया हो, हमारे सब के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, पूरे माशरे के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इसकी आइए हम लोग प्रार्थना करें इकट्ठे मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी के अगेन गणेश उत्सव में। टाइम और डेट 5 सितंबर 2026, 1 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, अगेन जेनेसिस सेंटर, बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, बस, ट्रेन, गाड़ी, एम्पल पार्किंग है, आप वहां पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, दिवेश भाई कहां कांटेक्ट करा जाए?
1: हमें ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5879664896 पर, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी. और इसमें अगर आप हमारी

0: वेबसाइट पे जाएंगे इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलोरी डॉट ऑर्ग पे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा आपको. बट आई एम हैप्पी टू टेल कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी. रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो हमें एक एस्टिमेट मिल जाता है कि कितने गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी. अगर आप आना चाहें तो विद रजिस्ट्रेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन कैसे भी आप ड्रॉप इन भी कर सकते हैं. 5 घंटे का इवेंट है. वी अंडरस्टैंड कि नॉट एवरीवन हैज 5 आवर्स ऑन अ डे टू स्पेंड ऑन वन थिंग. सो आप इसमें इस बीच में अगर आप पूरा इवेंट अटेंड करें तो बेस्ट है. नहीं कर पाते तो आप बीच में सेगमेंट्स में आ सकते हैं. आप शुरू के सेगमेंट या मिडिल सेगमेंट या टुवर्ड्स द एंड भी आ सकते हैं. तो
1: क्या बात है. अगेन दोस्तों फोन नंबर है 5879664896. ईमेल है info@calgaryindians.org और जो वेबसाइट है वो है www.indiansocietyofcalgary.org. तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है. जरूर पहुंचें और भगवान गणेश जी का आप आशीर्वाद लें. सो बिफोर वी एंटर टुडेज प्रोग्राम 30-30 सेकंड है. मनोज जी क्या कहना चाहेंगे?
2: क्या लेना चाहेंगे?
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: क्या कहना चाहेंगी? मेरी आवाज भी बहुत दबी हुई है, आप समझे इस बात. हम मैं और देवेश भाई एक ही नैया में सवार हैं. हम ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पाते. ऊंचा बोलते मुझ पे लगता है भाई चुप हो जा.
2: बस एक रिक्वेस्ट है सबसे, आइए गणेशा जी बनाइए. जब आप गणेशा जी बनाते हैं तो उस इंटेंशन से बनाइए कि आपके अंदर सब कुछ करने की क्षमता है और जब उन्हें आप विसर्जन करते हैं उनका, तो ग्रैटिट्यूड के साथ विसर्जन कर दीजिए कि जो आपके लिए नहीं है वो आपके पास से अगर जाता है तो आप उसे ग्रेसफुली छोड़ देंगे. तो इस भाव के साथ आइए. हर बच्चे को ये पता होना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और इससे अपने मन में वो भाव ला करके करिए. आपकी ग्रोथ को कभी कोई रोक नहीं सकता है उसके बाद.
1: बहुत गहरी बात कह रही दिवेश भाई. Deep thought है बहुत ज़्यादा. रेशमा जी आप क्या कहना चाहेंगे?
3: Yeah, one thing I wanted to say that हमारे पास lucky draws भी है and then we have amazing prizes for those lucky draws and we also have best dress contest. So whoever is coming, just like you know, come in your best dresses. Just like you know, you never know. Maybe you're like you know, you'll win a lot.
1: You'll
3: of
1: win,
3: prizes.
1: Yes, of course.
3: So we're like you know, and then we also have. Like you know, get your kids as Ganeshas. So get your kids dressed as Ganeshas, and then like you know, just come and then you can like you know enjoy the event together as a family. So.
1: Amazing, amazing. Devish bhai, koi last remarks.
0: यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अगर आपको लगता है कि ये आप रीजनल आपका इवेंट नहीं है, आप इंडिया के उस बैंड से नहीं आते हैं, जाएंगे मेन फेस्टिवल है, डजेंट मैटर. हमारे साथ रेशमा जो हमारी वॉलंटियर है, शी कम्स फ्रॉम तेलुगु कम्युनिटी.
1: क्या बात
0: है ना. तो वहां तो ये तो मोस्टली कहते हैं महाराष्ट्र कर्नाटका और नॉर्थ इंडिया का इवेंट है. बट जैसे हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वैसे हमारे सारे इवेंट्स भी पैन इंडिया सेंट्रिक ही होते हैं. तो इवन इफ यू कम देयर यू विल फाइंड योर बिलोंगिंग. डजेंट मैटर कि आप बैक होम ये इवेंट सेलिब्रेट करते थे या नहीं करते थे, ये इवेंट सबके लिए और सब लोग आए.
1: क्या बात है. सो दोस्तों जरूर पहुंचे और इस इवेंट को कामयाब बनाएं. अगेन गणेश उत्सव 5 सितंबर 2026 1 बजे जेनेसिस सेंटर में आप जरूर पहुंच के इस इवेंट को कामयाब बनाएं. आप सुन रहे हैं डेढ़ सौ संगम ओनली ऑन 94.7 FM पर. आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है. आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार नए गेस्ट के साथ. जब तक अपना आप ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें और जितना हो सकता है बाहर निकलें और इस मौसम को और जितने इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप इंजॉय करें. टेक केयर, थैंक यू एंड गुड नाइट.
4: ग्रोसरी खरीदने लिए हमेशा याद रखो कैलगरी का मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
5: ताजिया सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तनों तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा. कीमतां कट ते क्वालिटी A1.
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
5: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां. हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक.
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
5: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड,
5: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
5: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी.
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
5: 403-835-2222.